0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही यार।
0: अरे भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है सही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं।
1: कोई दिक्कत नहीं भाई मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से। कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।
1: जय राम जी की जय राम जी की
0: जय राम जी की।
2: You're watching India Today Television. India Today Television Studio is safe from dengue, protected by All Out.

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं, ये कांग्रेस के हाल थे। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले, और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं।
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Crackdown was carried out. It is a coordinated operation targeting organized crime networks involved in murder, extortion, drug trafficking, and also kidnapping.
1: As part of today's takedown, law enforcement has arrested approximately 24 defendants across the United States, Canada, and Europe, and we've executed 42 search warrants within the Central District of California and the Eastern District of California. These criminal organizations have engaged in widespread violence, including targeted killings, extortions, and kidnappings. The first indictment is against the Lawrence Bishnoi Organized Crime Group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide, and charges 9 defendants. It is led from India by the lead defendant, Lawrence Bishnoi. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rote Godara, are charged with racketeering conspiracy.
0: And my colleague Arvind Oja is now joining us with more details on this. Arvind, kis tarike se is pure operation hardball ko execute kiya gaya aur 24 logo ko arrest kiya gaya?
2: देखिए, बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में जो अमेरिकी एजेंसी है एफबीआई ने और कनाडा की जो एजेंसी है उसने इस ऑपरेशन को चलाया और कनाडा, अमेरिका में और यूरोप में छापेमारी की गई। तकरीबन 50 जगहों पर ये रेड्स की गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनके एसोसिएट गैंग के खिलाफ, और 24 लोगों को अरेस्ट किया गया है। भारी मात्रा में ड्रग और सोफिस्टिकेटेड वेपन वो रिकवर हुए हैं। साथ ही साथ एफबीआई ने भी प्रेस रिलीज जारी किया है और कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने भी प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें बताया कि जो लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग है वो कनाडा, अमेरिका इन इलाकों में एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता है, टारगेट किलिंग को अंजाम देता है। तो 24 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में, और प्रेस रिलीज में राजस्थान का जो गैंगस्टर है रोहित गोदारा उसका भी जिक्र किया गया है, और जो लॉरेंस बिश्नोई का एसोसिएट है गोल्डी बरार उसका भी जिक्र किया गया। साथ ही साथ एफबीआई ने जो गोल्डी बरार है उस पर $50,000 का इनाम भी रखा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि जो दोनों एजेंसी का स्टेटमेंट आया है, चाहे कनाडा की बात की जाए चाहे अमेरिका की, उसमें 2023 में कनाडा में जो खालिस्तानी टेररिस्ट था हरदीप सिंह निज्जर, उसके मर्डर का जिक्र किया गया है, और दोनों ही एजेंसी ने ये दावा किया है, ये आरोप लगाया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए अपने शूटर्स को कहा था।
0: जी अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो द यूएस प्रोसिक्यूटर्स हैव चार्ज्ड लॉरेंस बिश्नोई एंड हिज क्लोज एट गोल्डी बरार फॉर द किलिंग ऑफ द खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर इन कैनेडा। लेट्स टेक अ लुक एट द एंटायर बिश्नोई गैंग, द गैंग मेंबर्स हु ऑल आर दे। सो the head is Lawrence Bishnoi. He's one of India's most wanted gangsters. He operates international gang from Sabarmati Central Jail. Then comes his close-aide, Goldie Brar, who is accused in the Hardeep Singh Nijjar killing. He's responsible for many high-profile attacks. Then comes Rohit Godara. He operates from abroad. He's wanted in multiple murder cases. He's also part of the Bishnoi gang. Then comes Jaggu Bhagwanpuria. Now, he's the head of Bhagwanpuria gang. He's also accused of murder and extortion. And then comes Ravinder Singh Dhanda, who is also known as Randy, and Rolex and John Wick of Vancouver. And he's linked to transnational crime probe. So he's also a part of this Bishnoi gang, on which there has been a crackdown by the United States Federal Bureau of Investigation. And now 24 people have been arrested. In fact, Lawrence Bishnoi and Goldie Brar have been charged with the killing of Hardeep Singh Nijjar. Remember, he was a Khalistani separatist. He was killed in Canada, and now Lawrence Bishnoi and also Goldie Brar have been charged with the murder of Hardeep Singh Nijjar. Remember, after the killing of Hardeep Singh Nijjar, the ties between India and Canada became tense. And Canada had claimed, Justin Trudeau, the then Prime Minister of Canada, had claimed that India has a role to play in this. But now there has been a crackdown by the US FBI in which Lawrence Pishtoy and

0: On that note, viewers, we're beginning the bulletin with our focus on the state of Maharashtra and the monsoon mayhem that it has been, in fact, witnessing for the last 1.5 weeks. Now, Mumbai suburbs deluge on camera. As you can see, these are the dramatic visuals that have now come in of how people are wading through almost knee-deep water in places even more than that, as most locations are now heavily inundated from the continuous downpour of the monsoons. Vasai Virar remains completely underwater. 4 days of flood misery that continues in these regions. People dragging their cars as they wade through these very inundated areas, life thrown out of the gear by these heavy rains. As we see, there is no electricity, no power, no water in several areas, so which is why residents are finding it very, very difficult to cope up to these very conditions. They're battling the floods for the fourth straight consecutive day. Streets are now turning into complete rivers after the heavy rainfall. As we see, flooded colonies, stranded residents, all on ground zero. Vasai Virar water world is what we are looking at. Citizens continue to ask, when will the relief arrive? And this is a situation that we see almost every year during monsoons. On that note, let's quickly take a look at this ground report.
1: वसई विरार इलाके में लगातार छठे दिन भी बारिश का कहर शुरू है। आज लगातार छठे दिन बारिश के कारण पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई वेस्ट के मानिकपुर रोड पे। आप देख सकते हैं किस तालाब का स्वरूप इस रोड पे आ चुका है। ये जो बस है पिछले 2 दिन से पानी में बंद पड़ चुकी है। ऐसे ही हाल जो नाला सोपारा हो, विरार हो, सब जगह का है। नाला सोपारा का सेंटर पार्क हो, तुलिंज हो, कई लोग जो है घरों में फंस चुके हैं, दुकानों में पानी है। और मेन बात है, आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट का बॉक्स है, ये बॉक्स पानी के अंदर जा चुका है। ऐसे बहुत सारे बॉक्स है वसई विरार में जो पानी के अंदर है। इसीलिए आज भी 50% वसई विरार का इलाका जो है लाइट नहीं है, लोगों के हाल है, लोग पानी और खाने के लिए तरस रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है काम पे जाने की चलते चलते कोशिश कर रहे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर जो ट्रेन जो है वसई और विरार के बीच में आधा घंटा लेट है। वसई का आनंद नगर इलाका है, वो इलाका भी में भी बहुत सारे कम से कम 80 से 100 बिल्डिंग है वो पानी के नीचे। पूरे वसई विरार में हम बोले तो कम से कम 1000 के ऊपर जो बिल्डिंग है अभी अंडर वाटर है। बहुत सारी दिक्कतें इनको हो रही है। कई सारी गाड़ियां हैं वो जो बह के जा रही है, कई गाड़ियां रास्ते में बंद हो चुकी है। वसई विरार में जो है पूरी तरह तालाब का स्वरूप आया है। क्या हाल है फिर?
2: अरे बहुत बेकार हाल है इधर। 6 दिन से लगातार बारिश हो रहा है और पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और पब्लिक परेशान है, आने जाने का दिक्कत है। बस भी देखो इधर पड़ी है, खड़ी है, 4 दिन 3 दिन से पड़ी है समझ लो।
1: कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह और क्या तकलीफ आ रही है?
3: एक्चुअली स्टेशन से जा रहा था, मीरा रोड में जॉब करता हूँ, तो स्टेशन से जा रहा था, पर देख सकते हैं कितना पानी भरा है। क्या करें, मैं सोच रहा हूँ चल के जाओ या कैसे जाओ।
1: आप क्या बताना चाहेंगे?
2: 3 दिन से हम काम पर नहीं जा रहे हैं ये बारिश की वजह से, और हम लोग ऐसे घर पर ही बैठे हैं 3 दिन से। हम लोग का रूम में भी पानी भर चुका है
4: और पानी इतना है कोई पैदल नहीं चल पा रहा है। इतने गाड़ी वाले जा रहे हैं, सब गाड़ियां बंद हो रही हैं।

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: बोलती थी कि राम तो होया ही नहीं, ये कांग्रेस के हाल थे। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम होया ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण होया ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले, और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं।

0: actions carried out by the Iranian side. On the other side, Iran is also claiming that since June 18, at multiple occasions, United States has violated, and not only United States, but also they have accused Israel of violating the agreement and, in fact, the peace deal, provisions of the peace deal. And the very fact that the United States has decided to revoke their approval or their permission for Iran to export their oil is also gone wrong. And in fact, Iran has reacted very sharply to that decision of the United States, and they said that such actions will not go unresponded.
1: So Pranay, how exactly are we to understand what happens in the next few days as part of this escalation from either side, from both sides, especially the Strait of Hormuz, where once again the U.S. reportedly launched fresh strikes on Iran's southern coast? Does this further mean that when it comes to the restoration of global supplies that we were hoping would sort of see a new lease, now again remains in a bottleneck?
0: In the past few days, we have seen that, how the Strait of Hormuz almost on the track of normalization of ship traffic. The number of ships passing through the Strait of Hormuz got increased. And in fact, the international oil prices have also come down from like over $100 levels at the height of this conflict. But now, with this, this intermittent, levels of conflict in the region, and in fact, such incidents only escalate and make things more volatile. The situation remains precarious, and this puts a serious question mark on the longevity and on the survivability of this so-called peace accord and so-called peace deal. Because the very fact that there is no clarity that whether United States and Iran are engaging with each other to complete the technical level dialogue or technical level negotiation for the period of 60 days, because it was decided on June 18 that both sides will be engaging. They had their meeting in Birkenstock, Switzerland, to have a round of negotiation. And when U.S. Vice President J.D. Vance went there, there was some kind of agreement between both United States and Iran. But now there are serious questions whether there will be that whatever peace accord they have signed will be respected or not. And this is a serious danger to the situation in West Asia as far as the energy supplies are concerned, and as far as the long-term peace in the West Asia region is concerned.
1: Mm-hmm. Right. Pranay, I want to thank you for getting us those details. Of course, keeping a very close eye on every update coming in. Meanwhile, U.S. launches massive crackdown on the Bishnoi gang. U.S. has charged jailed gangster Lawrence Bishnoi and his close aide, Satinderjeet Singh, alias Goldie Brar, with ordering the assassination of Khalistani separatist Hardeep Singh Nijjar in Canada. A total of 24 accused have been arrested, of whom 11 were arrested in California, one in Indiana and one in Georgia. The other gangsters charged by the U.S. include Rohit Godara, Jagu Bhagwanpuria and Ravinder Singh Dhanda. U.S. authorities have also seized around 1,000 kgs of cocaine, a huge stash of heroin, large amounts of cash and multiple firearms. So let's now decode Operation Hardball, under which the crackdown was actually carried out. It is a coordinated operation targeting organized crime networks involved in murder, extortion, drug trafficking and kidnapping.
2: As part of today's takedown, law enforcement has arrested approximately 24 defendants across the United States, Canada, and Europe. And we've executed 42 search warrants within the Central District of California and the Eastern District of California. These criminal organizations have engaged in widespread violence, including targeted killings, extortions, and kidnappings. The first indictment is against the Lawrence Bishnoi Organized Crime Group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide, and charges 9 defendants. It is led from India by the lead defendant, Lawrence Bishnoi. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rohit Godara, are charged with racketeering conspiracy.
3: FBI ने और कनाडा की जो एजेंसी है उसने इस ऑपरेशन को चलाया और कनाडा अमेरिका में और यूरोप में छापेमारी की गई, तकरीबन 50 जगहों पर ये रेड्स की गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनके एसोसिएट गैंग के खिलाफ, और 24 लोगों को अरेस्ट किया गया है। भारी मात्रा में ड्रग और सोफिस्टिकेटेड वेपन वो रिकवर हुए हैं। साथ ही साथ एफबीआई ने भी प्रेस रिलीज जारी किया है और कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने भी प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें बताया कि जो लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग है वो कनाडा अमेरिका इन इलाकों में एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता है, टारगेट किलिंग को अंजाम देता है। तो 24 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में, और प्रेस रिलीज में राजस्थान का जो गैंगस्टर है रोहित गोदारा उसका भी जिक्र किया गया है, और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग लॉरेंस बिश्नोई का एसोसिएट है गोल्डी बरार उसका भी जिक्र किया गया। साथ ही साथ एफबीआई ने जो गोल्डी बरार है उसके उस पर $50,000 का इनाम भी रखा हुआ है। आपको यह भी बता दें कि जो दोनों एजेंसी का स्टेटमेंट आया है, चाहे कनाडा की बात की जाए चाहे अमेरिका की, उसमें 2023 में कनाडा में जो खालिस्तानी टेररिस्ट था हरदीप सिंह निज्जर उसके मर्डर का जिक्र किया गया है, और दोनों ही एजेंसी ने ये दावा किया है, ये आरोप लगाया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए अपने शूटर्स को कहा था।
1: Let me take this to my colleague Rohit Sharma now joining us on the broadcast. Rohit, do tell us more about this Operation Hardball, which is being seen as a global fight against the transnational organized crime networks.
4: Well, you know, this was something that was in the works. We've been told the FBI was working on this for months and years, is what they've said. Something that India has maintained over the years about these transnational, crime syndicates that have been operating in various countries, including US, Canada, and Europe. And this morning, you know, they conducted at least 50 raids, 50, and then arrested 11 people in California. And then again, I think the bigger thing is, you know, we could all, the Indian side, at least for them, has been the fact that they've named Bishnoi as somebody who actually is who authorized the killing of Hardeep Singh Nijjar, who was, as we all know, a known Khalistani extremist who was based in Canada. You know, something India had maintained for a while. India had said this to the Canadians that this transnational gang is responsible. Something FBI also put it out in their charge sheet, naming him as somebody who actually authorized the killing of Hardeep Singh Nijjar. So this has been going on for a while. I mean, there are these 37 people that were arrested. 20 search warrants were executed in California, in the Sacramento area. And then obviously the fact that Goldie Barar has been finally named as FBI's most wanted. There were reports that he's in the US, but FBI today putting him on the most wanted list.
1: Right, Rohit, many thanks for getting us those details. We cut across to more breaking news coming in. And well, US is all set to seek Lawrence Bishnoi's extradition from India. This according to Canadian authorities, who are saying that America will seek gangster Lawrence Bishnoi's extradition from India, where he is currently imprisoned after charging him with the assassination of Hardeep Singh Nijjar, says RCMP Deputy Commissioner Lisa Moreland. Bishnoi, Goldie Brar, who've been charged for Nijjar's killing. According to the US court, Bishnoi and Goldie Brar ordered Nijjar killing. And the US court has also said that Lawrence Bishnoi gave Nijjar's pictures to those aides. US has claimed that Bishnoi and Goldie Brar killed pro-Khalistani terrorist Nijjar. Let me take this to my colleague Arvind Ocha, who's joining us on the broadcast. Arvind, जिस तरह से अब ये स्टेटमेंट आ रहा है कनेडियन अथॉरिटीज से, आप और क्या जानकारी दे सकते हैं, किस तरह से यूएस अब इंडिया से मांग कर रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार को एक्सट्राडाइट किया जाए?
0: देखिए, जो आरसीएमपी जो कनेडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसकी डिप्टी कमिश्नर ने एक कनाडा के चैनल से बातचीत में ये बताया है कि अब जो अमेरिका है वो लॉरेंस बिश्नोई के एक्स्ट्राडिशन की मांग करेगा। दरअसल ये सवाल तब उठा जब 7 जुलाई को एफबीआई ने एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम दिया था ऑपरेशन हार्डबॉल। उसके तहत लॉरेंस बिश्नोई और उसके एसोसिएट के खिलाफ कनाडा, यूरोप और अमेरिका में बड़े पैमाने पर रेड्स की गई, 24 लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके अलावा यूएस ने कुछ चार्ज भी लगाए हैं लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पर। वो यूएस के कोर्ट का डॉक्यूमेंट इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है,
5: यूएस ने आरोप लगाया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार इन दोनों ने जो खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का ऑर्डर दिया था, और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या 8 जून 2023 को कनाडा के सर्री इलाके में हुई थी, जब वो गुरुद्वारे से बाहर आ था तभी जो शूटर थे उन्होंने गोली मार के हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी थी। तो अब इसी सवाल का जवाब जब जो डिप्टी कमिश्नर लीजा है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो अमेरिका है वो इंडिया की जेल में बंद जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है उनके एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा।
1: जी अरविंद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। And while U.S. court's scathing indictment of Bishnoi and Goldie Brar, a sensational U.S. court indictment that has named jailed gangster Lawrence Bishnoi and his close aide Goldie Brar in the 2023 killing of Khalistani separatist Hardeep Singh Nijjar in Canada. Now, according to the indictment, Bishnoi and Goldie Brar conspired to eliminate Nijjar. The court papers allege that Bishnoi provided Nijjar's photograph and address to his associates and that this information was used to execute the assassination. The indictment also claims that Bishnoi continued to operate his criminal network from inside jail using mobile phones. So who exactly is Hardeep Singh Nijjar? Nijjar was designated a terrorist by the Indian government and was accused of being a key figure in the Khalistan Tiger Force. Indian agencies had alleged that he was involved in plotting terror attacks and recruiting extremists. It was on the 18th of June 2023, Nijjar was shot dead by masked gunmen outside a Gurudwara in Surrey in British Columbia. His killing that triggered a major diplomatic crisis after Canada alleged the involvement of Indian agents. India strongly rejected these allegations, calling them baseless and politically motivated. Moving on. The Encounter Ranch in Bengal, where Prime accused in the rape and murder of a 12-year-old girl in Baraupur, was shot dead by the police early Tuesday after he allegedly snatched a policeman's firearm and opened fire while being taken to the crime scene for reconstruction. Remember, Prabhas Mondal was among the three accused arrested after the body of a minor girl who had gone missing on the 4th of July was found stuffed inside a sack in a pond in Baraupur, triggering violent protests by locals. Meanwhile, Prabhas's mother has refused to accept her son's body, saying that her son got what he deserved. A political slugfest has erupted over the encounter. The BJP has hailed the police action, saying that no criminal will be spared under the BJP government, and accused the TMC of favouring a particular community during its rule. The Mamta camp, on the other hand, has questioned the encounter, calling it fake. It alleged that the accused was a BJP worker who knew the party's deep secrets and was silenced before he could spill the beans.
6: It all transpired around 12:45 a.m. At night when Prabhas Mondal, one of the accused arrested in Baraupur rape case, was taken. Where we are standing right now, this is the place I'll show you. This is the place where he was brought in to take to do the reconstruction. And this is the place which is cordoned off, was the spot where from the body of the 12-year girl was recovered. He was brought on this field. It's a very, very remote and a desolate location. And following this, when police was taking him around in this area, you will see another spot there cordoned off. That's the very place where Prabhas Mondal tried to run away from police. And while he was trying to flee, he took out one of the arms of one of the policemen and allegedly fired on police. And following that, police have retaliated. And in that retaliation, he was shot. He was immediately removed to a hospital in Baraupur, where he was declared brought dead.
7: যেরকম কর্ম করেছে সে সেরকম সাজাতে
8: ছেলে দেহ নেবেন
7: না আমি নেব না আর আমি আনবো না আমি কিছু করব না
8: কেন কেন নেবেন
7: না নেব না আমার সে ক্ষমতা নেই আমি যে আনবো ও ভালো কাজ করে মরিনি ও যেরকম করেছে ও মরে গেছে আমার সে সুখ শান্তি নেই আমি আনবো না দেহ
9: সরকার কো জো কদম উঠানা চাইয়ে তা ও কদম উঠায়া বাকি পশ্চিম বঙ্গাল কা জনতা কে সামনে সারে রিচ হ্যায় हम लोग इधर कामदुनी भी देखा कैसे पिछले सरकार ने इंक्वायरी किया और ऐसे इंक्वायरी किया जो मूल जो मेन एक्यूज था कुछ कम्युनिटी को खुश करने के लिए उसे छोड़ दिया गया। कामधुनी का निर्जातिता जो था उसको न्याय नहीं मिला, तो आज उसी स्थिति बदल गया। नया सरकार आया, समाप्रसत के भूमि पे समाप्रसत का सरकार आया, अभी किसी भी अपराधी को किसी भी रेपिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा।
10: तो ऐसा ब्रांडेड क्रिमिनल, बॉर्न क्रिमिनल, तो ये लोग को कोई भी सजा ये लोग के लिए आप बोल नहीं सकते जे ये ठीक है सही है। तो इन्वेस्टिगेशन के स्वार्थ उसको ले जा रहे थे पुलिस वालों ने, वो बंदूक छिनताई किए है, भागने का कोशिश किए है और गोली भी चलाया है। तो इसके अलावा पुलिस के पास तो कुछ नहीं था, तो पुलिस के पास भी बंदूक पिस्तौल था, तो पुलिस एनकाउंटर किए है।
11: मुझे लगता है कि प्लानिंग के तहत किया गया है, ये जो बोला कि वो हमारा बंदूक छीन के गोली किया, ये सब सरासर झूठ है। तो साफ है कि ये जबरदस्ती एनकाउंटर किया गया।
12: आपको मालूम है प्रभास मंडल कौन है? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसके पास बहुत सारे इनके बारे में मालूम है और यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। जिन लोगों को इनकी अंदर की बातें हैं, बीजेपी की अंदर की बातें मालूम है, इन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है, उस सब के बारे में ये लोग उगल न दें, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है कि एनकाउंटर हो गया। तुम्हारी कस्टडी में है, कैसे एनकाउंटर हो गया? तुमने तो उसको पकड़ के रखा होगा ना। तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। जिस तरीके से यूपी में सब कुछ छुपाया जा रहा है, उसी प्रकार से इन लोगों को छुपाया जा रहा है या फिर मार दिया जा रहा है, जिससे कि बीजेपी की बातें बाहर ना निकलें।
1: Moving on, named by FBI, SHO Gurinderjeet Singh Nagra shifted from Tanda Police Station to Police Lines. Inquiry that has been ordered by the Punjab Police. Tanda SHO Gurinderjeet Singh Nagra, who's been transferred to Police Lines following FBI video. This has been said by Jalandhar Rural SP, who's also saying that the investigation is underway. Tanda SHO Gurinderjeet Singh Nagra, who has been transferred to Police Lines, according to reports, allegations have surfaced in a video circulating on social media purportedly involving the FBI regarding the alleged extortion and demand for a large sum of money from a family that lives in the United States. Now, acting on this, the Hoshiarpur SSP has transferred Tanda SHO Gurinderjeet Singh Nagra to Police Lines. The matter will be investigated by the SP of Jalandhar Rural. Reports indicate that the DIG has formally ordered an inquiry into the case. The SSP stated that the matter has come to light based on the video and information circulating on social media so far. No official confirmation on clear details have been received from the Government of India or the Punjab government regarding this. He added that the full picture would only emerge after the investigation. For now, the Tanda SHO has been transferred to Police Lines as a precautionary measure and further action will be taken based on the investigation report. In fact, my colleague Kamaljeet, who spoke to Gurinderjeet Nagra, let's listen in to what he said.
13: अच्छा सर, ये FBI ने अभी थोड़ी देर पहले उनके अटॉर्नी जनरल ने आपका नाम लेते हुए सीरियस एलिगेशन लगाया है कि आपने $4 लाख एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की है।
14: मैं ये बात सुन सका, मेरी बात सुनिए, पर कोई किसी पर ब्लेम लगता है उसको वेरीफाई करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं थी, कि ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए। मेरे को तो आपके माध्यम से पता चल रहा है ये बात हुई है, मेरे सपने में भी नहीं किसी चीज का, मेरे को ऐसा कोई जो सुन रहा हूँ, मैं अभी से सुन रहा हूँ जी।
13: आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है?
14: मैं अभी कुछ दिखाना था मेरे को, मैं देख रहा था, लेकिन देखिए मेरे को पता ही नहीं, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और वहां से अनाउंस हो जाए, कोई वेरीफाई नहीं, कोई सबूत नहीं, तो समझ नहीं आ रही
13: है। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये जो फैमिली है वो LA में बेस्ड है और आपने कोई मर्डर का चार्ज लगाया है इनके परिवार के खिलाफ, जो होशियारपुर
14: फाइल है, हमारे पास फाइल है, देख लें, उसको रीइन्वेस्टिगेट करवा लें, उसमें क्या है। जो सच है जी सच रहेगा, उसमें 6 बंदे अरेस्ट है जी, यूएस से बेस्ड गैंगस्टर है, एक जो जिसने करवाया वो है, 3 बंदे हमारे यूएस में बैठे हुए पकड़ने वाले जी।
13: जी
14: हमें तो नंबर जोड़ा है ही नहीं जी, अभी यही तो इतना अमेरिका तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में पास आया है, तो उसको मेरे पास मेरे खिलाफ जो एविडेंस है वो तो मेरे को जानते को दे रहे हैं टेस्ट से, बातों से एक मतलब थोड़ी साफ हो जाएगा जी।
13: तो थोड़ा बताएंगे कि केस क्या था, कब कब कौन से साल का था, कुछ डिटेल बता पाएंगे आप?
14: हम ये एक मर्डर केस है जी, 14 जनवरी को हुआ था, हम लाइब्रेरी में मेनी में हुआ था, तो उसमें जो शूटर थे 3, वो एक गैंगस्टर है कुलराम रुडियाना और जयशील, 2 बंदे हैं यूएसए हैं, तो उन्होंने जिम्मेवारी ली थी नेक्स्ट डे में ये सारा हुआ जी। बस ऐसे ही पता नहीं, मेरे को तो खुद को हैरानी नहीं है जी, कोई मेरे को बताया है, फिर ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशन तो हो उसकी बात की, भाई आपके खिलाफ ये सबूत है ये एविडेंस है, कोई मेरे को पता नहीं, मेरे को तो बस फाइनल होकर पता चल रहा है जी ये आपकी।
1: Time now for a short commercial break. On the other side is a special show in the club where you get to watch all that is making news in the world of entertainment. Do stay tuned to India Today.

0: जर के हत्या के पीछे बिश्नोई और गोल्डी विरार का हाथ है और कितना ये मैटर करेगा जिस तरह से हम इंटरनेशनल प्रोपोर्शंस पे इस केस को देखते हैं।
1: देखिए 8 जून 2023 को जो खालिस्तानी टेररिस्ट है हरदीप सिंह निज्जर, उसका मर्डर हुआ था कनाडा के सरी इलाके में। जब वो गुरुद्वारे से बाहर आ रहा था, कुछ शूटर्स आए, उन्होंने हत्या की। उसके बाद जो कनाडा की पुलिस है वो ये दावा करने लगी कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। हालांकि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बिना एविडेंस के इंडियन गवर्नमेंट पर भी आरोप लगा दिए थे। उसके बाद कनाडा पुलिस का ये दावा है और अमेरिकन एजेंसी FBI का ये दावा है कि इन्वेस्टिगेशन की गई, कुछ शूटर अरेस्ट हुए और उनसे ये खुलासा होता है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने जो शूटर्स हैं उनको ऑर्डर दिया था हरदीप सिंह निज्जर को मारने का। कोर्ट डॉक्यूमेंट जो इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है उसके मुताबिक FBI ने यह भी कोर्ट में कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई इंडियन जेल में बंद था और वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था, उसी ने शूटर्स को हरदीप सिंह निज्जर की फोटो और लोकेशन भेजी थी। लगातार वो मोबाइल फोन पे इस पूरी किलिंग को ऑपरेट, जो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है इसको मॉनिटर कर रहा था, उसी ने मर्डर कराया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूजा कि जब ये मर्डर हुआ था उसके कुछ दिनों के बाद जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की मीडिया ने कहना शुरू कर दिया था कि इंडियन एजेंसीज और इंडियन गवर्नमेंट का इसके पीछे हाथ हो सकता है। लेकिन आज खुद जो कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसकी डिप्टी कमिश्नर ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में न तो इंडियन गवर्नमेंट का कोई हाथ मिला है और न ही इंडियन एजेंसी का कोई लेना देना है। तो ये एक बात साफ कर दी है। अब दावा अमेरिकन एजेंसी और कनाडा की एजेंसी ये कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी का इसमें हाथ है। एविडेंस उनके पास क्या होगा जब कोर्ट केस ट्रायल में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।
0: अरविंद आप मेरे साथ बने रहिए। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी लेडीज एंड जेंटलमैन। इमेजिन अ मल्टीनेशनल अथॉरिटी जॉइंट ऑपरेशन क्रैकडाउन, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड यूरोप अगेंस्ट डिफरेंट गैंगस्टर्स एज दे आर कॉलिंग दीज सस्पेक्ट्स हू हैव बीन अरेस्टेड एंड दैट दे वर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क एंड द लिंक इज टू इंडिया लिंक्ड गैंगस्टर्स। बट आई वांट टू रिटरेट, लॉरेंस बिश्नोई एज मेंशन्ड बाय द अथॉरिटीज इज ऑलरेडी इन इंडियन प्रिजन। What is the crackdown that has happened and is on organized crime or what kind? Who are they after? Lawrence Bishnoi, who's currently in the jail on different charges and different cases, is being seen as the gang leader, and which he is. And we've seen that there have been serious cases against him. But this time, they believe that he's been the one as mastermind to order the execution of Hardeep Singh Nijjar. He's been imprisoned in India for years now, but also Satinder Singh. You may not recognize the name, but the face. The face has emerged in the past few years as Goldie Birar. According to authorities, while his location is not clear, it's somewhere in North America that he's believed to have been based. And Goldie Birar is the one releasing either audio or sometimes the press statements, so to say, that come in for public domain to say that he's the one who's taking responsibility of so-and-so attack, threat or any kind of attempts that have been made. Rohit Godara is the third individual. He's somewhere, according to investigators, based in Europe and is also a part of Bishnoi gang. And that is why the authorities believe that this is an organized network, because they're not just involved in assassinations, but political murders, extortions, thefts and drug smuggling as well, narcotic substance abuse that is being spread around. The authorities are claiming that they are the ones behind it. Sukrat Singh Kang is also one of the lieutenant, as is being seen, of Lawrence Bishnoi. So while Bishnoi definitely has been in prison, but the investigators say that from prison he's been able to use contraband devices and he's been in touch with these specific individuals. Now this is important. This is another gang, Bhagwan Puriya gang. Jaggu Bhagwan Puriya, and we'll go across to Arvind Oja and he'll help us understand all of this, is the Bhagwan Puriya gang founder. He also has a share of associates and aides and leaders. Bhagwan Puriya, as you can see, has been in the news for different issues, but again, continues to be imprisoned in India. But again, the investigators say already has been in some way being able to operate from within the jail. Now, Gurlal Singh is part of the Bhagwan Puriya gang as well. Several other members, different locations that they have been based. Some of them are in locations that are not traceable, but have been able to have their network. These individuals also recruit the young ones. He's been in police custody presently. Let's go across to others as well. And I'm quoting from the American authorities.

0: police are saying. Gurdev Singh is also from the Bhagwanpuriya gang member. There are three gangs, in fact, that the authorities have mentioned. Vindo, Jarvin, tell us about the three gangs. Ye jo Bhagwanpuriya gang hai, Bishnoi gang hai, isko international authorities kyun itna focus de rahe hain?
1: अब देखिए, जो एफबीआई है, जब उसने ये पूरा ऑपरेशन चलाया है तो उसमें डिटेलिंग दी है और उसमें बताया है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके अलावा उसके जो एसोसिएट गैंग है उन पर ये जो पूरा ऑपरेशन है वो चलाया गया है. लॉरेंस बिश्नोई उसके बारे में लगभग सभी को मालूम है. गोल्डी ब्रार जो लॉरेंस बिश्नोई का एसोसिएट है, ऐसा बताया जाता है कि दोनों ने मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई, ऐसा आरोप है. जग्गू भगवानपुरिया की बात करें तो पूजा, वो इन दोनों से, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार से बड़ा गैंगस्टर है. पंजाब का रहने वाला है और इंडिया का सबसे अमीर गैंगस्टर माना जाता है. कबड्डी में इसकी एक कबड्डी की टीम भी है. ड्रग्स का बड़ा ये एक किंग पिन इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि ड्रोन के जरिए जो पाकिस्तान से इंडिया में ड्रग आते हैं वो उसमें जो जग्गू भगवानपुरिया उसका अच्छा खासा नेटवर्क माना जाता है. फिलहाल ये इंडिया की जेल में बंद है, लेकिन विदेशों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है, ये इंडियन एजेंसीज भी कहती है. और इस वजह से इंडियन एजेंसीज ने इस पर शिकंजा कसा है. गृह मंत्रालय के ऑर्डर पर इसको पंजाब की जेल से नॉर्थ ईस्ट की जेल में भेजा गया है ताकि ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल न कर सके, अपना नेटवर्क नहीं बना सके. लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम वर्ल्ड में आने से पहले, गोल्डी ब्रार के क्राइम वर्ल्ड में आने से पहले, काफी पहले जग्गू भगवानपुरिया क्राइम नेटवर्क में, क्राइम सिंडिकेट में आ चुका था. पंजाब से ये ड्रग का कारोबार करता था. और जब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार से जग्गू भगवानपुरिया का एसोसिएशन हुआ, उसके बाद ये बड़ा नेटवर्क हो गया. देखिए, एफबीआई ने भी मेंशन किया कि किस तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग है उसने जो यूरोप, कनाडा, इन सब इलाकों को आपस में बांट लिया था.
0: इसमें ढांडा गैंग की भी बात है, जो रविंद्र सिंह ढांडा गैंग है उनके भी मेंबर्स है.
1: बिल्कुल, देखिए रविंद्र ढांडा की अगर बात करें
0: जी, मैं एक बार ये समझना चाह रही हूँ,
1: रहता है और ये ड्रग का बेसिकली सप्लायर है, ड्रग लॉर्ड इसे कहा जाता है.
0: इसमें इंडियन गवर्नमेंट का रोल कहाँ आता है? कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, वेस्टर्न अथॉरिटीज की तरफ से एक अटेम्प्ट भी है टू शोकेस दैट this is all being connected to India. So how can the Indian government ensure that this is not about governments, politics, society? These are gangsters, and if at all the gangsters are involved, they will be punished as well. क्योंकि शायद extradition की भी मांग की गई है. अरविंद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं.
1: देखिए पूजा, इंडियन गवर्नमेंट तो पहले से ही एक्शन ले रही है सभी के खिलाफ. और लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, बाकी जो गैंगस्टर जेल में है वो जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाए. इस वजह से होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर निकाला और इन सभी को दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया, नंबर एक. नंबर दो, बाकी गैंग मेंबर वो इंडिया से इसलिए भाग गए क्योंकि जब एनआईए ने और इंडियन एजेंसी ने उन पर शिकंजा कसना शुरू किया तो वो अमेरिका और कैनेडा में पहुंच गए. अब ये वहां पर जाकर वहां के कानून का फायदा उठाते हैं. मसलन अगर कोई गैंगस्टर यहां से भागता है, वो डंकी रूट से अमेरिका में एंटर कर जाता है, एफबीआई जब उसे पकड़ती है तो उसे फिर एक शेल्टर होम में डाल दिया जाता है. उसके बीच वो अमेरिका की एक अदालत में एक एप्लीकेशन मूव करता है कि उसे असाइलम चाहिए, क्योंकि इंडिया में जब जाएगा तो उसे जान का खतरा है. और इसका फायदा उठाकर फिर वो वहां पर अमेरिका में काफी दिनों तक रहते हैं, कानूनी लड़ाई चलती रहती है और इन सबके बीच वो एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं. तो इंडिया ने इन सभी गैंगस्टर पर शिकंजा कसा है. कनाडा और अमेरिका को सोचना चाहिए कि वहां पर ऐसे कैसे लॉ है कि ये गैंगस्टर किस तरह से वहां पर चले जाते हैं, किस तरह से वहां पर एंट्री हो जाती है. उनको अपने बॉर्डर एरिया को देखना चाहिए, कैसे डंकी रूट से मेक्सिको के जरिए, कनाडा के जरिए वो अमेरिका में एंटर होकर इतने लंबे वक्त तक.
0: और एक और सवाल अरविंद, थैंक यू फॉर गिविंग अस ऑल द डिटेल्स. आई ऑल्सो हैव अनदर क्वेश्चन टू नॉट फॉरगेट that there are these Khalistani extremists who are also misusing the soil, the foreign soil where they're residing in Canada, Europe, United States of America. I hope the authorities are going after those elements as well, because that would then give benefit of doubt to the authorities that a lot is being done against terror. Appreciate you joining us, Arvind Oja, for the latest. This is the big story coming in. Multinational joint operation being done by authorities to go after gangsters, and they believe this organized crime network primarily was the one behind Hardeep Singh Nijjar's killing. I want to take you now to Bengal. Recently, there was a terrible tragedy that had taken place, a tragic case of a 12-year-old girl, a minor girl who was found dead. And reports suggested that she was also raped, gang-raped, in fact, and then she was thrown into a nearby lake. When her body was retrieved, there were three accused, according to the police, who had been confirmed. We're now told that the prime accused in the rape and murder of the girl in Baroipur, Prabhas Mondal, has been shot dead by police in an encounter when he was being taken to the crime scene for reconstruction. The cops say that he allegedly snatched a policeman's firearm and then opened fire. Mondal was among the three accused arrested after the body was found on 4th of July. It was found stuffed inside a sack in a pond in Baroipur and triggered violent protests. Prabhas's mother, interestingly, has refused to accept her son's body, saying her son got what he deserved. A political slugfest but has erupted. The BJP has hailed the police action, saying no criminal will be spared under the BJP government, accusing the TMC of favouring a particular community during the rule. Mamata camp, on the other hand, is questioning the encounter, calling the encounter as a fake one, alleging that the accused was a BJP worker who knew the party's deep secrets and was silenced before he could spill the beans.
2: It all transpired around 12:45 a.m. At night when Prabhas Mondal, one of the accused arrested in Baroipur rape case, was taken. Where we are standing right now, this is the place I'll show you. This is the place where he was brought in to take to do the reconstruction, and this is the place which is cordoned off, was the spot where from the body of the 12-year girl was recovered. He was brought on this field. It's a very, very remote and a desolate location. And following this, when police was taking him around in this area, you will see another spot there cordoned off. That's the very place where Prabhas Mondal tried to run away from police. And while he was trying to flee, he took out one of the arms of one of the policemen and allegedly fired on police. And following that, police have retaliated. And in that retaliation, he was shot. He was immediately removed to a hospital in Baroipur, where he was declared brought dead.
3: सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था वो कदम उठाया. बाकी पश्चिम बंगाल का जनता के सामने सारे रिश्ते है. हम लोग इधर कामधुनी भी देखा कैसे पिछले सरकार ने इंक्वायरी किया और ऐसे इंक्वायरी किया जो मूल जो मेन एक्यूज था कुछ कम्युनिटी को खुश करने के लिए उसे छोड़ दिया गया. कामधुनी का निर्जातिता जो था उसको न्याय नहीं मिला. तो आज उसी स्थिति बदल गया. नया सरकार आया, समाप्रसाद के भूमि पे समाप्रसाद का सरकार आया. अभी किसी भी अपराधी को, किसी भी रेपिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा.
4: तो ऐसा ब्रांडेड क्रिमिनल, बॉर्न क्रिमिनल, तो ये लोग को कोई भी सजा ये लोग के लिए आप बोल नहीं सकते जी ये ठीक है, सही है. तो इन्वेस्टिगेशन के स्वार्थ थे उसको ले जा रहे थे पुलिस वालों ने. वो बंदूक छिनताई किए है, भागने का कोशिश किए है और गोली भी चलाया है. तो इसके अलावा पुलिस के पास तो कुछ नहीं था, तो पुलिस के पास भी बंदूक पिस्तौल था, तो पुलिस एनकाउंटर किए है.
5: मुझे लगता है कि प्लानिंग के तहत किया गया है. ये जो बोला कि वो हमारा बंदूक छीन के गोली किया, ये सब सरासर झूठ है. तो साफ है कि ये जबरदस्ती एनकाउंटर किया गया.
6: आपको मालूम है प्रभास मंडल कौन है? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है. उसके पास बहुत सारे इनके बारे में मालूम है और यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया. जिन लोगों को इनकी अंदर की बातें हैं, बीजेपी की अंदर की बातें मालूम है, इन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है, उस सब के बारे में ये लोग उगल न दें, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है कि एनकाउंटर हो गया. तुम्हारे कस्टडी में है, कैसे एनकाउंटर हो गया? तुमने तो उसको पकड़ के रखा होगा ना. तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। जिस तरीके से यूपी में सब कुछ छुपाया जा रहा है, उसी प्रकार से इन लोगों को छुपाया जा रहा है या फिर मार दिया जा रहा है, जिससे कि बीजेपी की बातें बाहर ना निकलें।
0: I want to now take you to Maharashtra because this is one visual that has shocked everyone. There's a lot of outrage against it. And again, a certain entitlement that comes with those who may be in political, powerful positions, even if he's a corporator. Now, why this has happened? And look at visuals on your screen. The kind of right that some believe that they can get away with by slaps and punches. And for some reason, we have seen a lot of these instances that have come in from Maharashtra. This case is from Dombivli. A Shiv Sena corporator allegedly assaulted doctors and nurses at the Shastri Nagar Hospital. This is July 7th CCTV footage. Shows the corporator assaulting doctor, misbehaving with the hospital staff, even threatening nurses, and is seen hitting a medical practitioner. Despite the visuals, the accused Ramesh Mathre has denied allegations, saying he did not hit any woman doctor, claiming the video is misleading and blames camera angle what appears to be the assault. The incident has triggered widespread outrage, questions being raised over why the accused has not been arrested. But police have arrested three of his aides, Ramesh Pawar, Pramod Nikam and Akshay Karande, in connection with the assault. Police have said corporator will also be arrested soon. But the nurses who were attacked, this is where it gets more sensitive, they broke down. They recalled being punched, slapped and humiliated. Meanwhile, Shiv Sena MP Shrikant Shinde, condemning the attack, assuring strict action will be taken, saying accused will not be spared. Incident has once again raised concerns over the safety of doctors and healthcare workers.
7: आणि मी ठासून सांगतो या ठिकाणी का मी महिला डॉक्टरवर हात उचललेला नाही। हे जी टी व्ही फुटेजमध्ये सी सी कॅमेरा फुटेजमध्ये जे येते तर कॅमेऱ्याचा अँगलमुळे येत असेल ती महिला डॉक्टर माझ्या मुलीसारखी आहे म्हणून ती म्हणतो एकेरी उल्लेख करतो ती माझ्या मुलीसारखी आहे। तिचे मॅरेज झाले का नाही ते पण मला माहिती नाही। सतत कानाला बोलत होती आमची रिक्वेस्ट ऐकत नव्हती आणि त्यामुळे मी तुझा फोन ठेव बाजूला आमची कंप्लेंट आधी घे काय आमची तक्रार घे ऐकून घे एवढंच तिला बोललो आणि मी त्या महिलेला मारलेलं नाही। आम्हाला बाळासाहेबांची शिकवण आहे त्यामुळे महिलेंवर आम्ही हात उचलला नाही आणि याच्या पुढे उचलणार नाही। आणि हे जे काय घडली घटना ह्या हॉस्पिटलच्या कमतरतेमुळे असेल तर ते हॉस्पिटल फुलफिल करण्याची जबाबदारी मी आतापासून चालू करेन।
8: ओ मेरे बेटी लड़की का प्रेग्नेंट थी और हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए गई और उसका सोनोग्राफी किया और हॉस्पिटल में लेके गए तो उन लोग ने बोला है क्या इमरजेंसी है तो इधर हो नहीं सकता है सायन में लेके जाओ। तो इमरजेंसी है तो हम लोग बोले इमरजेंसी है तो सायन में हम कैसे लेके जाएंगे उधर तो सब डूब गए कुछ नहीं वो लोग ने सब अफवाह उठा दिया है कुछ नहीं दादा ने खाले हम लोग का ऐसे बोले और सायन में ही लेके जाओ इसीलिए बोले दादा मैं तो मेरे रोने लगी। मैं दादा को फोन किया दादा ऐसा ऐसा बोल रहे सायन में कैसे लेके जाओ मेरे मेरे बच्ची को। तो दादा ने बोले तुम लोग क्या करे मेरे को बताओ ऑक्सीजन लेवल नहीं तो मुझे बताओ।
9: एक पेशेंट आई थी उनके साथ आरोपी और उनके रिश्तेदार आए थे। उन्होंने डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे वैभव सोलंकी और महिला डॉक्टर थी और नर्स थे इनके साथ उपचार करने के बारे में बदतमीजी की और उनके साथ मारपीट की गाली गलौज की धमकी दी गई। ये केस में स्थानीय नगर सेवक रमेश मात्रे और एक महिला आरोपी है और ये अन्य जो तीन अरेस्ट किए गए आरोपी है अक्षय कारंडे रमेश पवार और प्रमोद निकम ऐसे करीबन टोटल चार आरोपी है टोटल पांच आरोपी है।
10: Yes, definitely. See, when someone like a corporator whom everybody trusts, who is an elected member, who understands the law, who understands the basic deficiency in the government setup that is there because of the lack of infrastructure, a lack of equipment, lack of lab technologies, lack of the ICU setup. And instead of praising them, instead of doing something good for them, instead of boosting their morale, if something like this happens, then every doctor who is working in the government setup, especially in Maharashtra, what they must be going through right now. They don't have even the respect for the female doctors who are working there, for the healthcare workers who are working there. What kind of precedence is this setting up? What kind of criminal mindset is such politician having that they are thinking that they can do something like this and get away with it? What is the situation of the law and order in the state? This is very serious matter and we are taking strict cognizance of this matter. This is something which requires immediate attention of the government, and we are going to write to the Chief Minister to arrest this person.
11: अध्यक्ष महोदय, दिनांक 7 तारखेला 6 जुलैला डोंबिवली इथे शास्त्री नगर हॉस्पिटलमध्ये एक गर्भवती महिला गेली असताना तिचं चेकअप झाल्यानंतर तिकडच्या डॉक्टरांनी तिला सांगितलं की आपण प्रेग्नंट आहात, आपल्याला जे काही बाळ होईल कदाचित प्रीमॅच्युअर होईल आणि आपल्याला एनएससीओची गरज लागेल, तर आपण शास्त्री नगर रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात जा, इथे एनएससीओचे निकूचे सगळे जे बेड्स आहेत ते भरलेले आहेत. पण हे ऐकताच कोणीतरी तिकडच्या एका स्थानिक नगरसेवकाला बोलवून तिकडच्या महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर, नर्सेस, आता आपण ऐकतो की आपण अजून काही नवीन नर्सिंग कॉलेज वगैरे सुरू करणार आहे, पण अध्यक्ष महोदय त्या नगरसेवकांनी हात उचलला आणि त्या डॉक्टरांना मारहाण केली. अध्यक्ष महोदय, किती गंभीर प्रकरण आहे, किती गंभीर प्रकरण आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणजे एखादा कोणी डॉक्टर आपल्याला सांगतो की ह्या हॉस्पिटलमध्ये बेड नाही आहे, निकूची गरज लागणार आहे आपल्याला, आपली ऍडमिशन दुसऱ्या हॉस्पिटलला करून देतो, आपण मारहाण करायची या डॉक्टर्सना? महिला असो, पुरुष असो, कुठचेही डॉक्टर्स असो, कुठचेही नर्सेस असो, कुठचेही रेसिडेंट डॉक्टर्स असो, अध्यक्ष महोदय काय चाललंय आपल्या राज्यामध्ये? मला वाटतं सगळेच इथे मान्य करतील की असं जर डॉक्टर्सना मारहाण व्हायला लागली आणि जर काम बंद झालं तर बाकीच्या रुग्णांबद्दल काय अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, आमची मागणी ही आहे की आपण निर्देश द्यावे सरकारला, एक तर मुख्यमंत्री महोदयांकडून ह्याच्यावर निवेदन व्हावं, त्या नगरसेवकावर कारवाई व्हावी आणि त्या नगरसेवकाला त्याच्या पदावरनं बरखास्त केलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय, नाही तर हा महाराष्ट्र शांत बसणार नाही अध्यक्ष महोदय. ही आपण इथे निर्देश दिले पाहिजेत अध्यक्ष महोदय, आपले निर्देश याच्यावर गरजेचे आहेत.
0: फादर ऑफ अ यंग डॉक्टर सेज दॅट सच अन इन्सिडेंट हॅज लेड टू अ शॉकिंग इम्प्रिंट ऑन द माइंड ऑफ दिस यंग डॉक्टर विटनेसिंग व्हॉट हॅपन्ड, अँड करंटली द मेंटल हेल्थ ऑफ दिस डॉक्टर is not just down, but the doctor is refusing to attend the hospital. Let's listen in to the father.
12: आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं? हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र बाविस्कर, जिनकी डॉटर डॉक्टर सृष्टि बाविस्कर पर शास्त्री नगर म्युनिसिपल हॉस्पिटल में कॉर्पोरेटर रमेश मात्रे और उनके साथ के लोगों ने अटैक किया था. आइए डॉक्टर महेंद्र बाविस्कर से बात करते हैं उस इंसिडेंट के बारे में. डॉक्टर महेंद्र, आप खुद एक डॉक्टर हैं, इस प्रोफेशन में हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, आपकी डॉटर भी इस प्रोफेशन में है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व कर रही हैं और इस तरीके का अटैक हुआ, अभी डॉक्टर सृष्टि की क्या कंडीशन?
13: एक्चुअली डॉक्टर सृष्टि उस दिन के जो अटैक पे, हमले पे इतनी डिप्रेशन में गई है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. अभी वो इस हॉस्पिटल में जॉब करना नहीं चाहती है, उसको डर लगता है कि अभी भी ये नगर सेवक बोलो, गुंडे बोलो, ये लोग आके डॉक्टर पे, सिस्टर पे, मौसी पे हमला करते हैं, हमको कुछ प्रोटेक्शन नहीं है और यहाँ रह के अपना जान को धोखा है. इसके वजह से वहाँ यहाँ का भी फुल डिप्रेशन में है.
12: उस दिन पता चला कि डॉक्टर सृष्टि पर जब हमला हुआ उन्होंने तुरंत घर पे फोन किया, आपको बोला कि तुरंत आप हॉस्पिटल आ जाएं. जब आप हॉस्पिटल आए उसके बाद डॉक्टर सृष्टि ने आपको क्या बताया?
13: मैं तुरंत पहुंचा जब ये गुंडे लोग, ये नगर सेवक यहाँ हमला करके चले गए थे. यहाँ का माहौल डर का माहौल था, इधर सिस्टर लोग रो रही थी, मौसी लोग रो रही थी, वो डॉक्टर ऐसे ही पड़ा था, सृष्टि श्री वहाँ बैठती वो भी बोल रही थी कि मुझे भी मारा, फोन मेरा फेंक दिया, मेरे हाथ पे मारा, और जो कंडीशन थे वो
0: Divyesh is speaking to the father of one of the doctors who is currently is facing not just depression but the fact that she's traumatized. She doesn't want to go back to the hospital where she had taken a pledge to work. Let's listen in again to what the father is happening. In fact, Divyesh is joining me for the latest on that. Divyesh, for some reason I've seen these instances in Maharashtra earlier as well, remember, because the instances of some corporator or somebody specially associated with the Shiv Sena, old or new, would be seen thrashing someone they don't like. Why do you think this incident, though, has attracted and garnered so much outrage, backlash? What are we looking at? What is the government of the day saying?
12: Well, this incident is an example of the Neta high-handedness, a Neta high-handedness behavior at a government-run hospital, at a municipal hospital in Dombivli, where the doctors say that they were providing additional adequate facilities for the patient. The patient needed NICU, which was not there at the hospital, but they were making arrangements for an NICU at other places, at a government hospital in Mumbai, at a government facility in Kalyan. But the patients were adamant that they wanted their patient to be admitted in the same facility, but there was no NICU present. Remember, it could be a threat to the baby's life, to the infant's life, when there is no NICU present. And that is why they were insisting that they go to the other facility at Kalyan, which was barely 10 kilometers, which was, or to Mumbai, where they could get better facility. But the patients were not listening. And then comes Ramesh Mhatre, the corporator of the nearby area, nearby locality. He threatens the doctors, threatens the medical staff. And then when they were talking to their superiors, remember, Dr. Shruti Bhaviskar, whose parents have spoken to India Today, to Aaj Tak, have clearly stated that Shruti Bhaviskar was then speaking to her senior, her superior, the CMO, Dr. Sadia Panjari. When she was over the phone, she was pushed, she was assaulted by Ramesh Mhatre, and after her phone was taken away. That is when, that is recorded into CCTV, and that is, this CCTV has gone viral. That is, but that has brought to light the high-handed behavior of Ramesh Mhatre and his goons, his accomplices, who assaulted the male doctor, the female doctor, the nursing staff present at the hospital. And that is why this
0: Is there a protest right now by the doctors? Because from the looks of it, if the doctors are so traumatized, they don't want to return to work, what is the sentiment there on the ground among the doctors and the medical practitioners?
12: Well, there is a protest going on at the government facilities in Kalyan and Dombivli. The OPD is not functioning. Only the emergency wards are functioning. As of now, there is no OPD. Outpatient department is not functional at Kalyan and Dombivli. There are only two municipal hospitals in Kalyan. One in Kalyan, one in Dombivli, and both the places. There is a protest going on, there is a strike going on, and that is why the OPD is not functional. Only emergency services are functioning right now. Skeletal staff is present and they are helping for the emergency services to run. But the demands of doctors and the staff of these hospitals is that security should be beefed up and action, strict action needs to be taken against the perpetrator, against the culprit. And you can see over here, the senior leaders, senior politicians arriving at the Shastri Nagar Hospital. Just a while back, the NCP Sharad Pawar party leader Rohit Pawar had come, and now Aditya Thakre from Shiv Sena UBT has just arrived at, you can see in our frame, Aditya Thakre from Shiv Sena UBT has just arrived at the Shastri Nagar Hospital. He's going to speak to the doctors, to the protesting doctors, and he's going to meet the doctors who are there at the Shastri Nagar facility of Dombivli.
0: So we'll stay with these visuals, Divyesh, that are coming in. It looks like because of the outrage that we see, senior officials or members from the fraternity also who have raised a lot of alarm are ensuring that they are seen there at the hospital. Tell us more about this, Divyesh. Who are these people who are at the hospital? What is their intention?
12: Well, Pooja, the protest, the attack was carried out by corporator Ramesh Mhatre and his accomplices. Also, the patient's relatives attacked the doctors and nurses at the Shastri Nagar Hospital. They did not listen to the arrangements being done by the doctors at the Shastri Nagar facility. They were adamant that their patient be admitted, her delivery be carried out at the Shastri Nagar facility. And when the baby is delivered, there was the diagnosis of doctors said that the baby needed NICU because it was a premature delivery. The baby needed an NICU to be hospitalized. But NICU was not vacant at the hospital, and that is why there was a heated argument between the patients and the doctors. Patients started abusing doctors, and then Ramesh Mhatre entered. Ramesh Mhatre then abused the doctors, threatened the doctors, and then there was an assault on the doctors present at the Shastri Nagar facility.
0: All right, Divyesh, keep tracking all the latest on that. Remember that, understandably, there could be anger, there could be pressure on the corporators to speak up for, let's say, who believe they are the victim families. But there has to be a protocol. You cannot barge into a hospital like this and start thrashing the medical practitioners, slap them. call the cops if you need, but such behavior is unacceptable. And this one at least has a recorded footage, evidence, and we'll see if there's an apology coming in from Matre on this.

0: can't ban fields. They're government ponds, at least on paper. Crores were spent, water was promised, but on the ground there's only dry land. And big questions over where the money went. The Mission Amrit Sarovar, launched by Prime Minister Narendra Modi in 2022, promised to rejuvenate 75 ponds in every district to conserve water and help farmers. But India Today's special report in Madhya Pradesh found that at several locations, the pond exists in government records, not on the ground. The first stop, Resan. Out of 30 Amrit Sarovars examined in Silvani block, 11 failed to deliver their intended purpose.
1: तालाब जैसा बनना चाहिए वैसा आपका तालाब नहीं बना क्या वजह है क्यों नहीं बन पाया वैसा
2: वजह अभी सर उसमें राशि भी रुकी है अभी राशि नहीं मिली 5 की समथिंग निकली है
1: तालाब कितना कंप्लीट हुआ है आपका
2: वो ही है 60% कंप्लीट होगा कुछ और काम बाकी
0: When the responsible officials were asked, the responses were evasive.
1: अमृत तालाब बनाया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी लेकिन धरातल पर जीरो ग्राम पर कुछ भी नहीं है ये सब
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से रायसेन जिले में भी जो अमृत सरोवर तालाब बनाए गए थे उसमें बहुत सारी अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण कराया गया था उनका उद्देश्य केवल एक ही था कि जल जो भराव की जो क्षमता है वो बड़ी हो
0: Then comes Rewa. An RTI claimed that nearly 25 lakh rupees was spent on an Amrit Sarovar. But investigators say the pond simply wasn't there.
4: कई बार शिकायतें हुई मतलब लगभग 4-5 साल से निरंतर शिकायतें हुई इस विषय पर ध्यानाकर्षण किया गया RTI लगाई गई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कहीं कोई जांच नहीं हो रही है भ्रष्टाचार अपने चरम पर है
5: कि आखिर इसको मूर्त रूप देने वाले कौन थे वो भ्रष्टाचारी कौन है जिन्होंने तालाब के नाम पर प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए पैसा खाया है वो आखिर किन पर कार्रवाई हुई वो आज भी फाइलें डंप हैं और दोषियों पर आज भी कार्रवाई नहीं हो रही है
0: The questions don't stop there. In Shahdol, 25 lakh rupees was siphoned off by passing of pits created during road construction as ponds. Now a probe has been ordered.
6: और ये तालाब जो मेरे संज्ञान में आपने लाया गया है इसको हम जिला स्तर से एक टीम बना के उसको हम जांच करेंगे अगर ऐसा हुआ है तो सख्त कार्रवाई करेंगे
0: Government data says more than 68,000 Amrit Sarovars have been created across India, spending over 10,000 crore rupees. In Madhya Pradesh alone, official expenditure is around 737 crore rupees. But if the farmers see no benefit, and if villages are still waiting for water, one question remains, where did the money go?
7: मुझे लगता है कि जो भी ये आरोप लगाए रिपोर्ट दे यदि वो तथ्यात्मक बातें करेंगे तो हम कार्यवाही करने के लिए भी तैयार हैं लेकिन जहां तक हमने कोशिश की है कि सिपरी सॉफ्टवेयर के मुताबिक हमने उनको देखा है और दूसरा हमने पिछली बार गर्मी में उनमें कितना पानी है इसका भी आकलन कराया
0: द अमृत सरोवर मिशन प्रॉमिस्ड वाटर सिक्योरिटी बट इफ पॉन्ड्स एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर द रियल शॉर्टेज इज इन वाटर It's accountability.
8: इस योजना का मकसद सिर्फ तालाब खोदना नहीं बल्कि गांवों में पानी बचाना किसानों की आय बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा को सुनिश्चित करना था लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद यदि तालाब सिर्फ कागजों में अमृत बनकर रह जाए तो सवाल खड़े होंगे ही और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि तालाब अगर बन गए और धरातल पर पानी ही नहीं है तो फिर इनको बनाने के लिए ये लाखों करोड़ रुपए जो खर्च हुए आखिर वो गए कहां रवीश पाल सिंह भोपाल आज तक
9: All right, Ravish joins us for the very latest on this story now. Ravish, हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में अस्पताल जो पेपर पर है पर जमीन पर नहीं तालाब जो पेपर पर है जमीन पर नहीं पानी जो मिलना चाहिए वो है नहीं पैसा पर जरूर खर्च हो रहा है आपका और मेरा टैक्सपेयर का मन जरूर इस पे जा रहा है कितना पैसा खर्च हुआ है सिर्फ मध्य प्रदेश में स्कीम पर
8: देखिए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं मध्य प्रदेश में तालाब के नाम पे लेकिन इंडिया टुडे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो साफ बता रही है कि जहां पे जमीन है सूखी जमीन है बंजर जमीन है वहां तालाब बने हैं ऑन पेपर जमीन पे नहीं यही नहीं रायसेन जब हम यहाँ पे दमोह में गए तो दमोह में हमने क्या देखा कि वहाँ पे जहाँ पे तालाब बनाने की बात की जा रही है वहाँ पे तो खेत है, वहाँ फसल लगी हुई है, वहाँ तालाब ही नहीं है। और तो और आप ये देखिए पैसा कमाने के लिए क्या क्या नए नए तरीके अपनाए जाते हैं कि जहाँ पे हाईवे के लिए मिट्टी निकाली गई थी जिस जमीन से, उस जमीन से जब मिट्टी निकलने के बाद गड्ढा रह गया छोटा सा तो उसको भी तालाब बता दिया गया और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से करीब 25 लाख रुपए निकाल लिए गए, यानी पैसा कहीं से भी निकले लेकिन जमीन पे वो चीजें नहीं दिखेंगी जिसका दावा किया जाता रहा था। अब आपने बात की टैक्स पेयर्स मनी की, टैक्स पेयर्स मनी से हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है, गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन हो क्या रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जो टैक्स का पैसा जा रहा है उससे जहरीला पानी पी के इंदौर में लोग मर रहे हैं। हेल्थ सिस्टम पे टैक्सेस का पैसा खर्च होता है, हमारी टैक्सेस का पैसा होता है आपके और हमारे, उससे हो क्या रहा है, जहरीली कफ सिरप से छिंदवाड़ा में बच्चे मर रहे हैं। हम सब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं अभी और हम टैक्स पेयर्स की मनी से ही,
9: और ये जो और ये सब मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ये कितनी सारी योजनाएं हैं जो पूरे पैन इंडिया चल रही है इस समय जिसके बारे में हम बात नहीं कर पा रहे हैं। रवीश आज समय की कमी है तो थोड़े माफी चाहती हूँ, पर आपकी सारी स्टोरीज हम फाइव लाइव पर जरूर दिखाते रहेंगे। अभी हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी विल स्लिप टू अ क्विक ब्रेक, अ क्विक हेल्थ अपडेट कमिंग अप ऑन द अदर साइड, स्टे ट्यून्ड।
10: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
11: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
12: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
13: www.indiatodaymediainstitute.in or call us on 956006545.
14: This is talent rising and dynasty falling. Look at it across the country. Wherever talented leaders are leading regional parties, those parties are doing exceptionally well. Look at how well Vijay is doing. The point is, if you don't bring talent up and if you do Bhai Bhatijawad, that is where the problem takes place.

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: ऑयल कौन से यूज होते हैं?
2: मस्टर्ड ऑयल।
1: आपके हिसाब से सबसे हेल्दी ऑयल कौन सा? क्या आपको पता है सारे ऑयल्स का कैलोरी काउंट सेम होता है?
2: नहीं, वो नहीं पता।
1: क्यों तो मेरी बताइए।
3: क्या आपके घर में भी ऑयल को लेकर बहुत डिबेट चल रहा है? तो लेट मी ब्रिंग सम ब्रेकिंग न्यूज टू यू। नो मैटर व्हाट ऑयल यू यूज, द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट यू कंज्यूम रिमेन द सेम। हम आपके लिए लेकर आए एक ऑयल की सीरीज जिसमें हम अलग अलग ऑयल्स को कंपेयर करेंगे और अल्टीमेटली आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपने ऑयल के चॉइसेस लेने चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, मस्टर्ड वर्सेस रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल। इस वीडियो सीरीज के लिए हमने बात करी है डॉक्टर प्राची जैन से, हु इज द HOD ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन वैशाली। सबसे पहले कुछ मैक्रो समझ लीजिए। अगर आप एक टेबल स्पून ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें करीब 15 ml ऑयल आएगा एंड 135 कैलोरीज होंगी। ये कॉन्स्टेंट रहता है क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज जस्ट प्योर फैट। तो बात आती है इन्फ्लेमेशन इंडेक्स की। अकॉर्डिंग टू WHO, ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का जो रेशियो है वो बिटवीन 1:1 एंड 4:1 होना चाहिए टू प्रिवेंट एनी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल जो होता है दैट फेल्स ड्रास्टिकली बिकॉज उसका रेशियो क्या है, 65:1। नाउ इट एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेलुलर इन्फ्लेमेशन, बट इफ यू आर यूजिंग कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल देन दैट एसेस द गेम बिकॉज दैट इज नियर आइडियल 2:1 रेशियो। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। हमारे घर में खाना सब बहुत हाई हीट पर बनता है और उससे क्या होता है, ऑयल ब्रेक्स डाउन इनटू टॉक्सिक एल्डिहाइड्स and that is linked to cellular damage. Sunflower oil jo hota hai, that is mostly a PUFA, matlab polyunsaturated fatty acid. And think of these as fragile molecule chains that break down instantly under hot Indian stove, creating harmful free radicals. Mustard oil jo hota hai, that is packed with MUFA, ya fir monounsaturated fatty acids. Now think of MUFA as a stable molecule structure that does not easily snap under heat, giving it a high smoke point of above 225 degrees Celsius. But then there is another catch that nobody tells you about. Mustard oil contains something called a rucic acid, and that is exactly why it is banned as plain edible oil in US, also in Europe, over concerns linked to heart muscle changes seen in animal studies mostly. But in India, FSSAI allows it with blending rules in place. Ab cost ki baat karte hain. Now mustard oil can vary from 130 to around 250 rupees a liter, and a liter of refined sunflower oil can cost around 250 rupees. So health verdict kya hai? Well, for your daily high heat Indian cooking, cold pressed mustard oil wins on inflammation and thermal stability. But do not treat it as a free pass to go all in on one oil. Agle video mein hum aapko batayenge coconut oil versus peanut oil mein kya difference hota hai. For more such videos, stay tuned to Health Wealth.

0: watching Super 6 in India. Today, I'm Suesha Samant, and we get you breaking news coming in amid raging controversy over ethanol. Union Minister Nitin Gadkari has countered critics. Gadkari has said that auto companies have not received any complaints due to ethanol. Gadkari has also said that 11 countries are using ethanol-blended petrol. Gadkari has slammed political attacks on E20 fuel, saying that there is an attempt to malign me politically. In fact, he spoke out on all the allegations of him benefiting from ethanol blended petrol. He also said, my stake in ethanol production is 0.7%. Gadkari said that I derive no personal benefit from the implementation of ethanol policy. Let's listen.
1: आज जो जितनी controversies हो रही हैं कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है या फिर केवल एक डर है, क्या है? क्योंकि कुछ
2: ठोस नहीं है कि मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं करता
1: जी, अल्टरनेटिव फ्यूल
2: और बायो फ्यूल की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिक भी मैंने शुरू की
1: जी,
2: अब हाइड्रोजन की भी बात करता हूँ, मिथेनॉल, सीएनजी, मैं ये सब अल्टरनेटिव बायो फ्यूल की इसलिए बात करता हूँ कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट का 87% है। आत्मनिर्भर भारत बने, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, और इसका फायदा युवाओं के लिए रोजगार निर्माण हो, और इसका फायदा किसान, अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधनदाता, हवाई ईंधनदाता, विटामिन दाता, हाइड्रोजन दाता बने, ताकि गाँव गरीब मजदूर किसान को फायदा मिले। इसलिए मैं बात 2004 से कर रहा हूँ। रही बात इसमें फ्यूल कैसा यूज करना, किसको ऐड करना, ये सब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकार में आता है। मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में ये जो ऑटोमोबाइल इंजिन्स है इसके स्टैंडर्ड फ्यूल के हिसाब से तय करना और उसके बारे में रेगुलेशन करके नियम करना, ये मेरे अधिकार में आता है। तो फ्यूल ऐड करना नहीं करना ये होता है, इसका टेंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकालती है, रेट कैबिनेट में तय होता है। और ये भी आरोप किया गया कि मैं इसके तो मैं इथेनॉल शुरू होने के पहले ही मैंने शुगर फैक्ट्री शुरू की थी, अब तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़के देखते हैं। और टोटल 1500 करोड़ लीटर जो इथेनॉल खरीदी किया जाता है वो 550 इंडस्ट्री है, कोई चावल से बनाता, कोई मक्के से बनाता, कोई शुगर के जूस से बनाता, कोई मोलास, उसमें हमारा शेयर 0.07% है। यानी 1500 लीटर में 1,70,000 में तो अल्कोहल बनाता हूँ, बॉटलिंग द्वार, तो हम लोग नहीं के बराबर, तो इसका बेनिफिट कोई हमको मिलेगा कोई विषय नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम अल्कोहल अपना यूज कर रहे हैं।
1: पर क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
2: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती
1: जी,
2: अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है
1: जी,
2: आपको कोई तकलीफ हुई
1: अभी तक तो नहीं?
2: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकते हैं आप?
1: अपना पर्सनल जान पहचान के?
2: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ।
1: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे
2: हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियाँ, इसमें जो गाड़ियाँ जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, एक बात जरूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है, 2-4 साल कोई पार्ट लगता है, कोई निकलता है। अभी एक पटना में घटना हुई कि टोयोटो कंपनी पर आरोप लगाया, वो इनोवा गाड़ी थी, वो खराब हुई वगैरह, तो उनने कहा गाड़ी दो हमको, हम चेक करना है, बोले नहीं देता, उनने कहा नहीं देंगे तो हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे, तो उसने गाड़ी दी, चेक किया तो उसमें पानी अडल्ट्रेशन किया हुआ मिला।
1: सर कोई खुद से थोड़ी मिलाएगा, मतलब
2: आप ही बताओ कि फिर बाद में उसका टेस्टिंग हुआ।
1: हाँ।
2: अब FIR दर्ज की उसके लिए। अब ये क्या है कि ये पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है, और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिस भी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे, और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार किए हैं इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
1: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल?
2: देखिए अमेरिका में इथेनॉल है, ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है, स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है। अब जिस देश में अपना खुद का पेट्रोल डीजल सस्ता अवेलेबल है वो यूज करने का कोई कारण?
1: सर ये भी समझाइए ना, क्या ये सचमुच में पायलट प्रोजेक्ट है, क्या अभी कोशिश हो रही है या ये
2: पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई इसको डिसेंट्रलाइज किया गया, कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता, 4-4 साल इसके एक्सपेरिमेंट होते हैं। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून, ARAI, सिकैट, ये सब लोग इसका टेस्टिंग 4-4 साल करते हैं, 2-2 लाख मीटर का टेस्टिंग होने के बाद फिर उसको सर्टिफाई करते हैं। आपको ये पूरी गाड़ियां वर्ल्ड में, ये टोयोटो की है, हुंडई की है, मर्सिडीज की है, ये अपने जो जो जितनी गाड़ी आज भारत में है, सुजुकी की है, यही तो वर्ल्ड में है। तो ये कंपनियां वर्ल्ड रेपुटेशन है उनका, क्या ये बिना सोचे समझे किसी के कहने पर ऐसे ही डाल देंगे, ऐसा आपको लगता है? सब टेस्टिंग करते उसके बाद ही आता है, ये कोई पायलट प्रोजेक्ट या प्रायोगिक तत्व पर नहीं आया। एक वकील ने प्रेजेंट करते हुए कहा, उसकी बातों को मिस इंटरप्रेट किया गया।
0: And we cut across to more breaking news coming in. The Enforcement Directorate has frozen TMC's 3 bank accounts. This is a statement from the ED, in fact, that Kolkata Zonal Office has conducted search operations at 5 premises in and around Kolkata under PMLA 2002 belonging to Carewell Group of companies operating in the aviation sector in the matter of alleged dishonest financial dealings, unlawful collection of money and routing of suspected funds through certain bank accounts of All India Trinamool Congress. During the search operations, balances amounting to 440.42 crore rupees lying in 3 HDFC bank accounts of All India Trinamool Congress have been frozen under PMLA 2002. That's the latest that is just coming in. It's a big setback for the TMC, and this time it is ED cracking the whip on the TMC, where 3 of their bank accounts have been frozen. The ED also putting out a statement to this effect, saying that Kolkata Zonal Office has conducted search operations at 5 premises in and around Kolkata under PMLA 2002 belonging to Carewell Group of companies operating in the aviation sector in the matter of alleged dishonest financial dealings. Let me take this to my colleague Indraneel joining us on the broadcast. Indro, what exactly are you picking up? What was TMC's connection with the Carewell Group of companies operating in the aviation sector? More than 440 crore rupees in these 3 bank accounts frozen. Any response from the TMC yet?
3: Well, Suvesha, this is a massive, massive blow for the Trinamool Congress, coming as it is a day after the Enforcement Directorate conducted searches in 5 locations. Now, this is Carewell Group of companies. This is a company which we are told used to arrange, all the travel and tour of Trinamool Congress, leaders. Now, the Enforcement Directorate is probing the money laundering aspect after an FIR was filed with the Bidhannagar cyber cell. There is an allegation of illegal transactions. Now, 3 bank accounts, which the HDFC Bank belonging to the Trinamool Congress, which has 440 crore rupees. Now, that has been frozen as part of this investigation. And the central agency now says that there are multiple transactions. One tranche of 160 crores, another of 82.96 crores. These are, dubious transactions as far as the investigating agencies are concerned. They are saying that there is money laundering involved in this entire process. There were money that was transferred from the account of these companies to the account of the Trinamool Congress, and therefore at this point in time, in order to carry forward the investigation, 3 of the accounts belonging to the Trinamool Congress with the HDFC Bank, the private bank, has now been frozen. So it comes as a huge blow to the Trinamool.
0: Right, Indro, many thanks for getting us those details. Breaking news coming in, tensions continue to escalate in the West Asia region as Trump has threatened Tehran. West Asia is on the edge yet again, Trump has said, will probably hit them again tonight. Trump has made this latest statement saying, I don't want to deal with them anymore. They're scum, they're sick people, they're led by sick people, and they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Earlier, Tehran had targeted Bahrain and Kuwait after US strikes and limited Iran's oil sales over ship attacks. Both Bahrain and Kuwait had been targeted by Iran on Wednesday. The US said that it hit over 80 targets in Iran earlier in the morning. Its strikes came after Iran attacked three ships in the Strait of Hormuz. Earlier this morning, we also got you details of that very statement from Trump, where he's called all Iranians sick people, and he said that as far as the peace deal between the two sides is concerned, it is over for him. Time now for a short commercial break. On the other side, my colleague Preeti Chaudhary on To The Point. Do stay tuned to India Today.

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।
1: जय राम जी की, जय राम जी की,
0: जय राम जी की।
2: Suzlon, good energies that work.

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
3: No drama, just the real Korean ritual in every bottle of Aquajay. Infused with Jeju-grown botanicals and powered by K-Beauty Science. Aquajay, now in India.
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.
6: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
7: Money, every month.
8: Soch batlo aur bank bhi.
9: इस वक्त हम अंधेरी सभे पे हैं और यहाँ पर अचानक से एक पेड़ गिर गया जब कुछ लोग चल के जा रहे थे और एक शख्स के ठीक सर पे लगा। अब सर ये कौन शख्स हैं, कहाँ से आ रहे थे?
10: हमारा कलीग है, अभी ऑफिस जा रहे थे, जस्ट रिसेंटली आए हैं अंधेरी स्टेशन जाने के लिए, जस्ट अभी तुरंत झाड़ गिरा हुआ है।
9: हाँ, अचानक से उन्हीं के सर के
10: ऊपर से गिरा, दो लोग साथ में थे बट एक कलीग के ऊपर झाड़ गिरा है तो उसको अभी हॉस्पिटल लेके गए।
9: जी सर, ये पेड़ आप लोग यहीं से रोज क्रॉस करते हैं, कोई दिक्कत?
10: डेली यहाँ से ही गुजरते हैं बट अभी आज इधर पानी भरा हुआ है, हम लोग ये वाले वे से जाते हैं बट पानी भरा हुआ है तो इसके लिए हम ये वे से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे गटर का पानी है।
9: ये हैं कौन, क्या नाम?
10: विरार से आ रहे हैं, आदेश गायकर नाम है इनका।
9: विरार से आ रहे थे?
10: हाँ।
9: और आप लोग के कलीग हैं? यहीं। और कहाँ काम करते
11: हैं?
9: यहीं पे पास में ही काम करते हैं। तो जैसा आपने सुना, ये लोग हर रोज इसी रास्ते से जाते थे लेकिन अचानक से ये देखिए एक पेड़ का जो वो वाला हिस्सा है वो अचानक से, दरअसल तेज बारिश हो रही थी, हवा भी बहुत तेज चल रही थी और अचानक से जो शख्स, तीन लोग हैं ये जा रहे थे, अचानक से उनके ऊपर ये पेड़ गिर गया, उनके ठीक सर पे लिखा लगा और तुरंत वो बेहोश हो गए और उन्हें अब पुलिस जो है यहाँ पे, उन्होंने तुरंत से अपनी गाड़ी निकाली और उनको अस्पताल की तरफ लेके गए हैं।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही।
0: मैं वही तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे।
1: जय राम जी की।
2: You're watching India Today Television. India Today Television Studio is safe from dengue, protected by All Out.

0: The Lawrence Bishnoi gang and their terror have caught the attention of Western investigators. Operation Hardball, a multinational crackdown against organized crime networks, has led to charges against 37 alleged gangsters. Federal prosecutors in Los Angeles announced criminal charges against members of the Bishnoi gang, tying them to the 2023 assassination of Khalistani separatist leader Hardeep Singh Nijjar. The focus directly is on Lawrence Bishnoi, currently lodged in an Indian jail, and his loyal lieutenant, Goldie Brar.
1: The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide, and charges 9 defendants. It is led from India by the defendant, the lead defendant, Lawrence Bishnoi. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rohit Godara, are charged with racketeering conspiracy.
0: As per the U.S. court documents accessed by India Today, Lawrence Bishnoi, 33 years of age, projected an image of himself as a patriot and nationalist and used this public image to recruit members and associates to his crime syndicate in India, the USA and elsewhere. But in private, Bishnoi presided over a sweeping criminal enterprise that spanned multiple continents. Though lodged in his jail cell, using contraband cell phones and other voice-over internet protocol devices, he was able to smuggle and personally direct murders and extortions worldwide. The Canadian government in September 2025 designated the Bishnoi Enterprise as a terrorist entity. The documents state, Bishnoi delegated control to trusted lieutenants including Satinderjeet Singh alias Goldie Brar, the North American leader of the Bishnoi Enterprise, Rohit Godara in Europe and Sukhraj Singh Kang. In June 2023, Bishnoi and Brar ordered the assassination of HSN, reference to Hardeep Singh Nijjar. On 7 July 2026, the FBI, in coordination with law enforcement agencies from Canada and Europe, launched a massive crackdown targeting India-based transnational organized crime networks. Over 50 locations were raided. Law enforcement seized large quantities of prohibited items, weapons, narcotics, including approximately 1,000 kilograms of cocaine and 1 kg of heroin. 24 suspects have been arrested so far. The operation primarily targeted 3 global syndicates, the Lawrence Bishnoi Enterprise, the Jaggu Bhagwan Puriya Gang and the Ravinder Singh Dhanda Network. Sources confirm the USA is considering to seek extradition of Lawrence Bishnoi now in this case. This is the biggest ever crackdown that has taken place against a criminal network. But the bigger question remains, would similar action be taken against Khalistani extremists who have been misusing foreign soil to spread terror and chaos? With Arvind Ojha, Bureau Report, India Today.
2: And that brings me to the last story of the show tonight. Pakistan-Afghanistan ties remain at their lowest point in years, and Afghans now believe for them their future is with India, not Pakistan. India Today's Mir Farid has traveled to Kabul, where residents have appealed to the government of India to relax visa norms. Take a look at this report. I'm leaving you with this. Thanks so much for watching.
3: Sach mein badli hain cheezein yahan pe 5 saal mein aman hai कहाँ अच्छा है और आगे आपको क्या लगता है कहाँ बेहतरी होनी चाहिए किस डायरेक्शन में सरकार को यहाँ की काम करना चाहिए जिससे और ज्यादा जो है जल्दी हालात बेहतर हो
4: अमन तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन तो इस तरह अमन है फिलहाल कि आप जिस रात के 12 बजे भी अफगानिस्तान के किसी कोने में जाना चाहें बच्चों के साथ बीवी के साथ फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम अमन तो अल्हम्दुलिल्लाह है थोड़ा सा मुश्किल जो है वो बच्चों के स्कूल्स के हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं लेकिन ये एक बात है कि 5 साल का दौर जो है बहुत बड़ा दौर है स्टडी के लिए तो अभी वो गुजर गया इसमें हम थोड़ा सा खफा हैं इसीलिए हम ज्यादातर अभी उम्मीदें जो हमारी है इंडिया से जो इंडिया हमारे लिए कुछ काम कर सके हमारे लिए बच्चों को स्कॉलरशिप दे दे हमारे बिजनेसमैन को वीजा वगैरह ताकि हम अभी हमारा किसी मुल्क के साथ कॉन्टेक्ट नहीं है
3: और उसी बारे में आपसे पूछूंगा वो थोड़ा सा आपको दुख है यहाँ पे कि 5 साल हो गए, तो कोशिश और होनी चाहिए कि अफगानिस्तान को थोड़ा खोलें दुनिया के लिए, दुनिया आए देखे कि यहाँ क्या है, किस तरीके का है, तो उसमें कहीं कमी है आपको लगता है? क्या डर है कि अभी जैसे सिफारतखाने ऐसे एम्बेसीज यहाँ ज्यादा नहीं, कुछ ही मुल्कों के साथ फॉरेन रिलेशंस हैं, बढ़ क्यों नहीं रहा है?
4: मीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सब कुछ अफगानिस्तान में ठीक है। सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वीजा सेक्शन के साथ, जो मुल्क इंटरनेशनल हमारा कांटेक्ट नहीं है। मैं खुद अभी बिजनेस करना चाहता हूँ जाफरान का, बहुत से और बिजनेस है, लेकिन मुझे वीजा नहीं मिल रहा। और बहुत से लोग हैं जो बहुत से हेल्थ के प्रॉब्लम्स में है, स्टडी प्रॉब्लम्स है, बिजनेस प्रॉब्लम्स है। अभी तो हमारा पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान के साथ सलाम दुआ भी नहीं रखना चाहते, ऐसे हमारे हालात हो गए। तो इसके बदले में किसी और मुल्क के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए।

0: And before arriving in Melbourne, Prime Minister Narendra Modi visited the 1,000-year-old Prambanan Temple in Indonesia. The visit went beyond diplomacy and foreign policy. It highlighted the deep civilizational and cultural ties that have connected India and Indonesia for centuries. Leaving you with this report. Thanks so much for watching.
1: After 2 days of meetings and major announcements, Prime Minister Narendra Modi's final engagement in Indonesia was a spiritual one. Along with Indonesian President, he visited the historic Prambanan Temple complex and offered prayers at the nearly 1,000-year-old Hindu shrine dedicated to Lord Shiva, Lord Vishnu and Lord Brahma.
2: दुनिया के दूर-दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। इस मंदिर में भगवान शिव, माँ दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है।
1: A visit that celebrated not just faith but a shared heritage. Prime Minister Modi called it a privilege to launch the temple's restoration project. He said the Prambanan is a timeless symbol of the civilization bond between India and Indonesia.
2: 1200 साल मैं यहां के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है, इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं।
1: He thanked Indonesia for preserving Hindu traditions for over 1200 years and said hearing the chants of Om Namah Shivaya at the temple reminded him of India's own spiritual traditions. He also drew parallels with Somnath and Kashi.
2: अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे। दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: The visit also marked the beginning of a new chapter in that relationship. India, through the Archaeological Survey of India, will help to restore the UNESCO World Heritage Site. President Prabowo Subianto also invited Prime Minister Modi to return in 2029 to jointly inaugurate the restored temple.
2: मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं, तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: Remember, for over 1,000 years, Prambanan has stood as a silent witness to a shared civilization journey. Now, India will help preserve that legacy for generations to come. As Prime Minister Modi concluded his Indonesia visit, the lasting image was not from a summit table, but from the steps of an ancient temple. A reminder that while diplomacy builds partnerships, it is shared faith, culture and history that make them truly timeless. Bureau Report, India Today.

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही यार।
0: अरे भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है सही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं।
1: कोई दिक्कत नहीं भाई मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से। कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।
1: जय राम जी की जय राम जी की।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा। ठीक है
1: बिल्कुल सही
0: ले भाई। तीन तेरा तीन मेरा। ठीक है सही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं।
1: बड़ी दिक्कत नहीं भाई मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से। कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।
1: जय राम जी की जय राम जी की
0: जय राम जी की।

0: The Lawrence Bishnoi gang and their terror have caught the attention of Western investigators. Operation Hardball, a multinational crackdown against organized crime networks, has led to charges against 37 alleged gangsters. Federal prosecutors in Los Angeles announced criminal charges against members of the Bishnoi gang, tying them to the 2023 assassination of Khalistani separatist leader Hardeep Singh Nijjar. The focus directly is on Lawrence Bishnoi, currently lodged in an Indian jail, and his loyal lieutenant, Goldie Brar.
1: The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide, and charges nine defendants. It is led from India by the defendant, the lead defendant, Lawrence Bishnoi. Seven of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rohit Godara, are charged with racketeering conspiracy.
0: As per the U.S. court documents accessed by India Today, Lawrence Bishnoi, 33 years of age, projected an image of himself as a patriot and nationalist and used this public image to recruit members and associates to his crime syndicate in India, the USA and elsewhere. But in private, Bishnoi presided over a sweeping criminal enterprise that spanned multiple continents. Though lodged in his jail cell, using contraband cell phones and other voice-over internet protocol devices, he was able to smuggle and personally direct murders and extortions worldwide. The Canadian government in September 2025 designated the Bishnoi Enterprise as a terrorist entity. The documents state, Bishnoi delegated control to trusted lieutenants including Satinderjeet Singh alias Goldie Brar, the North American leader of the Bishnoi Enterprise, Rohit Godara in Europe and Sukhrat Singh Kang. In June 2023, Bishnoi and Brar ordered the assassination of HSN, reference to Hardeep Singh Nijjar. On 7 July 2026, the FBI, in coordination with law enforcement agencies from Canada and Europe, launched a massive crackdown, targeting India-based transnational organized crime networks. Over 50 locations were raided. Law enforcement seized large quantities of prohibited items, weapons, narcotics, including approximately 1,000 kilograms of cocaine and 1 kg of heroin. 24 suspects have been arrested so far. The operation primarily targeted three global syndicates: the Lawrence Bishnoi Enterprise, the Jaggu Bhagwan Puriya Gang, and the Ravinder Singh Dhanda Network. Sources confirm the USA is considering to seek extradition of Lawrence Bishnoi now in this case. This is the biggest ever crackdown that has taken place against a criminal network. But the bigger question remains, would similar action be taken against Khalistani extremists who have been misusing foreign soil to spread terror and chaos? With Arvind Ojha, Bureau Report, India Today.
2: And that brings me to the last story of the show tonight. Pakistan-Afghanistan ties remain at their lowest point in years, and Afghans now believe for them their future is with India, not Pakistan. India Today's Mir Farid has traveled to Kabul, where residents have appealed to the government of India to relax visa norms. Take a look at this report. I'm leaving you with this. Thanks so much for watching.
3: सच में बदली हैं चीजें यहाँ पे पांच साल में अमन है कहाँ अच्छा है और आगे आपको क्या लगता है कहाँ बेहतरी होनी चाहिए किस डायरेक्शन में सरकार को यहाँ की काम करना चाहिए जिससे और ज्यादा जो है जल्दी हालात बेहतर हो
4: अमन तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन तो इस तरह अमन है फिलहाल कि आप रात के 12 बजे भी अफगानिस्तान के किसी कोने में जाना चाहें बच्चों के साथ बीवी के साथ फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम अमन तो अल्हम्दुलिल्लाह है थोड़ा सा मुश्किल जो है वो बच्चियों के स्कूल्स के हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं लेकिन ये एक बात है कि पांच साल का दौर जो है बहुत बड़ा दौर है स्टडी के लिए तो अभी वो गुजर गया इसमें हम थोड़ा सा खफा हैं इसीलिए हम ज्यादातर अभी उम्मीदें जो हमारी है इंडिया से जो इंडिया हमारे लिए कुछ काम कर सके हमारे लिए बच्चों को स्कॉलरशिप दे दे हमारे बिजनेसमैन को वीजा वगैरह था कि हम अभी हमारा किसी मुल्क के साथ कॉन्टेक्ट नहीं है
3: और उसी बारे में आपसे पूछूंगा वो थोड़ा सा आपको दुख है यहाँ पे कि 5 साल हो गए, तो कोशिश और होनी चाहिए कि अफगानिस्तान को थोड़ा खोलें दुनिया के लिए, दुनिया आए देखे कि यहाँ क्या है, किस तरीके का है, तो उसमें कहीं कमी है आपको लगता है? क्या डर है कि अभी जैसे सिफारत खाने ऐसे एम्बेसीज यहाँ ज्यादा नहीं, कुछ ही मुल्कों के साथ फॉरेन रिलेशंस हैं, बढ़ क्यों नहीं रहा है?
4: मीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह भी तो सब कुछ अफगानिस्तान में ठीक है, सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वीजा सेक्शन के साथ, जो मुल्क इंटरनेशनल हमारा कांटेक्ट नहीं है। मैं खुद अभी बिजनेस करना चाहता हूँ जाफरान का, बहुत से और बिजनेस है, लेकिन मुझे वीजा नहीं मिल रहा, और बहुत से लोग हैं जो बहुत से हेल्थ के प्रॉब्लम्स में है, स्टडी प्रॉब्लम्स है, बिजनेस प्रॉब्लम्स है। अभी तो हमारा पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान के साथ सलाम दुआ भी नहीं रखना चाहते, ऐसे हमारे हालात हो गए। तो इसके बदले में किसी और मुल्क के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है सही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं।
1: कोई दिक्कत नहीं भाई मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से। कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।

0: चलो चलो प्रसाद बांट ले।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।

0: चलो चलो प्रसाद बांट ले।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा। ठीक है
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा। ठीक है सही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं।
1: कोई दिक्कत नहीं भाई मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से। कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।
1: जय राम जी की जय राम जी की जय राम।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही।
0: मैं भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा। ठीक है
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
0: ले भाई तीन तेरा तीन मेरा। ठीक है सही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं।
1: कोई दिक्कत नहीं भाई मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह वा। चलो ठीक है हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से। कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे।
1: जय राम जी की जय राम जी की जय राम।